मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 031 93

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

हाय अल्लाह वही समाज जानान जानान राजी कौन देखे राजी मुदी उस वाले ओके हेलो वन टू थ्री माइक चेक माइक टेस्टिंग वही से गम द जानान राजी आउ जमा जमा जमा अरमान राजी आउ जानान राजी कम दे जाना न राजी मुदी उस वाले इंतजार इंतजार इंतजार इंतजार इंतजार आओ भला डेर इंतजार हो जाना हाय जाना ना हाय जाना ना इस उम्र से जाना जाना न ब्याहुम न राजी जाना जाना न मरा वर्ष वाले जाना जाना में दबल शब्द है

आज मंग दे नुजमंग द अस्पताल हेल्पलाइन नंबर जगम नगर सदा से दे 0330 40 40 305 0330 ईवारी ब्यावी में चाकर वर्दुन की शागी यानी वाड़ी दाच मंगल दे द हफ्ते उरस नंबर में लाऊं शिनो काइन दिल्ली तासु मोबाइल रावा अखली और नुजमंग द अस्पताल हेल्पलाइन नंबर में लाऊं के आउजान ला द रावानी हफ्ते द पारा नंबर ये वाखली चुप के नंदा जुमेरात उरस आउ द जुमेरात पोरस बांधे सुला द हफ्ते उरस नंबर मिलावेगी डॉक्टर हैदर मोहम्मद सवाबी पा अस्पताल के मौजूद हुई हैदर मोहम्मद होम्योपैथी जन अस्पताल नंबर है मोबाइल रवाखली उडाल के 0330 40 40 305 यानी 0330 नंबर याद अवल डेर आसान कार्य था सुमा मखिम बोई गड़े हुए अवल जी कम दे द नेटवर्क हिंस याद अवल के 0300 जमा द स्टूडियो मोबाइल 0333 सदा जमान उसमें खबर नंबर वेले हुए 0330 यानी दावल नहीं यानी द नेटवर्क कोड चलो ठीक चला बी दो हिंसे ये याद गई दो हिंसे बी याद गई और आखिरी त्री हिंसे याद गई तो तासुला मन नंबर 22 ले याद गई कम कम तरीके तासुला हो गया मां कॉस्मेटिक बांधे तासु पोयो मां अल्फाज बांधे तासु पोयो मां नंबर याद उल तरीके तासुला खे मां शाडूल तासुला वाचो मां संदरी तासुला वे मां किताब रातो सम बयाम गजल तासुला वे मां नातुन तासुला वे मां हे द सवाब खल बे अरमान कवि दा कम रेडियो च तासुला गवले दे दा द को रेडियो ब तासुला खन नजर की बिया बिलाल नहीं दा सदा 0330 40 40 305 पति बंद कालो खई आउजान ला दरारवान ओ पीडी दपार यानी दरारवान ये हफ्ते दपारा जान तन मरे वाकले जी अपडेट गुरचेरा जुमंग सर सुख सुख एक्टिव दी नन बबिया दुआ अब रुदुन की यानी दुआ अपडेट सदासे चियागी ले बमासे जी बेगा यानी परुन माखाम मंजन बाद चूंकि मामा खाम उन जुकुर द खैर सर अल्लाह ताला दे कबूल की दागी न बाद यानी मां स्टूडियो मोबाइल रवाग सुल सोफा की मेडा डबल गवल अब खसूर के वाला परिवर्तन मैसेज में रीड गवल दो नंबर वाला मैसेज चली दी आज मास्टर एक्टिव हुई अल्लाह ओके सो गाइस 0330 40 40 305 दीपन काल ओके ओजान ला दरा यानी द हफ्ते और से द पार नंबर वाखले बिलाल था सुसर लाइफ थे जी और लाइफ न बल्कि बराहरा

0: कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: Mavele mala da sharjana kali ravda
3: zo usta kalu da para sharje ta single ar shama
2: oho famina bazar dubai ki da sharja jewelers dukan de chatachi da dubai aur da sharja tole variety maujood da
3: nuda sewaya kana
2: sharja jewelers proprietor zeb brothers phone 09382732 65
0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk. रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk.

0: Tasso Pal Channel. Radio Dilwar.
1: We'll be back. Right after the commercial break.
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मध्यम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक
0: पल चैनल रेडियो दिलवर.
1: We'll be back. Right after the commercial break.
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मध्यम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत, और चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-9941. हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा दिल से.
3: होम्योपैथिक जनवाना को गम उन्हें जुड़ देशी दो ऑयली स्किन और दो दानों दो पारा यो डियर हास्टेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्ने क्रीम. तुम चिप सलूर सौ रुपए बने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर है डॉक्टर हैदर एंकिन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सीस प मुकम्मल तो गबान वाजिदा ना द दग दानो चकम दागु नदी अगर हम प मुकम्मल तो गबान खत्म की देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डियर हास्टेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्ने क्रीम. तुम चिप सलूर सौ रुपए बने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंकिन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सीस प मुकम्मल तो गबान वाजिदा ना द दग दानो चकम दागु नदी अगर हम प मुकम्मल तो गबान खत्मेगी पदे के दो इंग्रेडिएंट शामिल दी बेंजोइल परऑक्साइड सल्फ्यूलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यूरियल प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉज सिर्फ और द निजदी कॉस्मेटिक्स जदर एंटी एक्ने फेस वॉश दर एंटी एक्ने देर मसले अवारे के मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट www.com.pk.

0: एलोपैथिक अवाणु इला मिदेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्रानिस्त सुविधा कतासु के हम सुख पली बीमार से होम्योपैथिक खत्म होल गाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखा याद साते मेन जहांगीरी रोड बानी द शाह मंसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पदर मुमन होम्योपैथिक टाल शाह मंसूर सवाबई होमोस पारा नंबर वाखले चोरा हैदर मुमन होम्योपैथिक जल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई की हम
1: जिया स्टोर रूड़ी द सवाबे द खुंद मेंदु द पारा यो जबरदस्त खुशखबरी चे पहागे की तावस्ता द जरानो द सूट से खतलो हिस जरूरत निश्ता उस पकपल कोर की स्टोर ना द सर्दे तरीन डिजाइन और रंगुनो लेडी सूट तरला सकड़े अब हागा हम पकपल कोर की द व्हाट्सएप पर जरिया द होम डिलीवरी सहूलत सरा पार्सल चिक के या पैसी वर्कड़े जिया स्टोर द जरानो आगा महसूस स्टोर दे जिहागे की सिर्फ और सिर्फ जराना राबिता कबली शी अबल दा जमुन खुंद मेंदी पकोर की द कपड़ो कारोबार शोरू कवल गवाड़ी जिया स्टोर तास्ता पक्वांटेटे की द सूट्स द आर्डर कवलो सहूलत हम दर कवी चितास पखपल कोर की द कपड़ों बाइजत कारोबार शोरू करे जिया स्टोर द टोल नगद सहूलत दा हम दर कई चिकम सूट्स खर्च निशी या तास रिप्लेसमेंट कवल गवाड़े पर नवी डिजाइन के नुहम कवल इशे द हर किस्म नवी डिजाइन कलेक्शन द पारा हम उस जमु व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करे पदी कम्युनिटी की बा द प्राइवेसी तहत सासु नंबर न शो कीगी नबिया हम उस जमु द जिया स्टोर विजिट रोकड़े पता निस रहमानिया मदरसा मेने टूपी सवाबी या जमुन द जिया स्टोर पर व्हाट्सएप बांधे राबित उकड़े 0313-90-53-965
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजे ता सिंगल आर शमा
2: ओहो पमीना बाजार टोपाई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया का ना
2: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 0938273265
4: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM

0: broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m. Welcome to FM 94. Broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m. Welcome to FM 94. Broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी.
0: Welcome to FM 94. Broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन. कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे. यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है. दिलबर FM 94 सवाबी. दिलबर FM 94.